कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद सिद्ध करमो सब होई दुष्ट शाह श्वास कह न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी सर्ब ठौर मो हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्वजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भव निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चाओ पाई को कह चाओ पाई संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस फुण तीन के हिजै भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चित्रोपख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत।

ओहरा जब आए सो प्रभ को भयो जन्मत राजग आए अब मैं कथा छिनछेपते सबहू कहत सुनाए कब वाच दोहरा ठाठ भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते अहं संत अंत लहेंगे मुगत फाल

ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो, तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कितोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई। तरस पाया मेहरामत होई सदगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया। तरस पाया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया।

0: गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु सत्संग जी इतनी हाजरी प्रवान करनी भुला चुका दी खिमा बुलाओ पते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद पैसा पै सुरजीत सिंह जी कुहाड़का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर साहब वाले उन्हां दे सत्कारयोग रागी जथेदार जिन्होंने आप संगत नूं आरती आरता शब्द कीर्तन दे द्वारा निहाल किया है। हुण सत्कारयोगां ने बलविंदर सिंह जी मोह ग्रंथी गुरद्वारा जामनी साहब वाले आप संगत नूं कथा विचार दे द्वारा निहाल करनगे। 16 जुलाई तो सत्संग जी जो मेरी प्री समागम आरगम होणगे जो पहले 2 दिन कथा दरबार सजेगा 18 जुलाई तो 22 जुलाई तक शाम के समय ढाडी तकवीशर दरबार सजनगे 23 जुलाई तो 2 अगस्त तक कीर्तन दरबार सजेगा 1 अगस्त को सत्संग जी सालाना नगर कीर्तन है सवेरे 9 बजे गुरु चरणा विच अरदास बेनती करके नगर कीर्तन की आरंभता होगी 2 अगस्त को सवेरे 6 बजे खंडे बाटे का अमृत संचार होगा। सो सत्संग जी आप संगत ने सारे ही समागमां विच हाजरियां भर के सेवावां करके लाहे प्राप्त करने जी नगर कीर्तन विच सत्संग जी सुक्का प्रसाद कड़ा प्रसाद दे वास्ते देसी घ्यो अते डिस्पोजल बर्तना की सेवा गुरु घर विखे जरूरत है आप जी समर्था के मुताबिक कर सकते हो। हुण लंगर हाल दे विच प्रसादे पकाउण की सेवा अपने समय अनुसार करके सत्संग जी लाहे प्राप्त करने जी बेनती प्रवान करनी जी। आओ हुण कथा विचार दे नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पाठ भी पोला करना बेला नहीं करना। आवन अठत्रै जान सतानवै होर पी उठ सी मर्द का चेला। ये इतिहासक वचन सतगुरु सचे पातशाह महाराज जी कर रहे हैं। सो साध संगत जी, ये जड़ी गिनती आई है, इस गिनती दे मुताबक ये जड़ा सचे पातशाह जी ने प्रमाण दिता, साध संगत जी ये सारे का सारा प्रमाण जेड़ा सम्मत कैलेंडर के मुताबक सचे पातशाह बिक्रमी सम्मत के हिसाब के नाल चंद्रमा के कैलेंडर के हिसाब के नाल गरीब नवाज जी ने बख्शिश की है। सो गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज जी के इस वचन सानू वेखद्या होया दसम ग्रंथ साहब के विच भी वचन आते हैं, सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुखदावन। सो श्री सर्वलो प्रकाश च भी आते। सो साध संगत दी हुण असी नवीन कैलेंडर के मगर पै के मूल नानक शाही नालों टुट रहे हैं, जो श्री अकाल तख्त साहिब तो पंथ प्रवानित कैलेंडर है, उसके मुताबिक ही सानू पावन दिहाड़ियां नूं मनाउण दी जरूरत है जो चंद्रमा के हिसाब के नाल चलता है हुण। सो अकाल तख्त साहिब तो भी उस ही कैलेंडर नूं प्रमाणित किया गया है। क्यों? क्योंकि गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी बिक्रमी कैलेंडर के हिसाब के नाल गल आउंदी है, दसम महाराज भी श्री सरबलो प्रकाश के विच भी। सो इस प्रकार साध संगत जी कुछ अपनी लोड़ वास्ते गुरु के जिहड़े दिहाड़े ने उन्हां नूं अगे पिछे मनाउण दा जतन नहीं करना, गुरमत के अनुसार सच्चे पातशाह जी की रौह रीत नूं धारण करके ही सानू इकले कर्म अपने जिंदगी दे करने चाहीदे हन।
1: तिलंग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब आए हुक्म खसमाह।

0: हजार आलम इथे विश्राम ला के एक लखाना एक लखाना पाठ पोथियां च लिखती रूप विच हुण लिखण लग गए हन पर संप्रदायी पाठ है एक लखाना जिहड़ा लल्ला है वह खाना दे नाल जोड़ के ते एक अलग करके उच्चारण करना चंदी हजार आलम एक लखाना। हाँ जी
1: आसपात गाजपात नरह नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद।
0: भाई साहब

तीर्थ मंज वसन कुट कुट जिया खावणे बग्गे ना कही अन्न सिमल रुख शरीर मैं जान देख पुलन।

0: करना एड़े दे नाल ही उचारण करना भगत रसना ते प्रमाण देंदे हुए गरीब नवाज समझा रहे हैं भी वेखो किने किने नाम जपया ते केड़ी केड़ी पदवी प्राप्त कीती है।
1: खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नाम देओ लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख अठसठ तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिन कौ अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हारिया राध्या।
0: प्रताख रूप दे विच गरीब नवाज जी ने इथे वचन कीते हन खत्री ब्राह्मण पेठ दे छोड़े हर नाम दे ओलिया मुख लाए साध संगत जी जदों हजूर साहब वल जाओ उत्थे इक भगत नामदेव जी दा स्थान आउंदा है मंदिर साध संगत जी जिथे घूम गया सी ओह भगत रसना तो भगत नामदेव जी दे भी वचन आउंदे हन तो गुरु सच्चे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी ने भी अपनी मुबारक रसना तो प्रमाण दिता है कि जेड़े ब्राह्मण ते खत्री हंकार करदे सन जात दा जिन्हां नूं आपणे उच्ची जाति दा हंकार सी वाहिगुरू ने भगत नामदेव जी दी लत्था लज्जा रखदिआं होइआं उन्हां वल पिठ करके अपने भगत दी जिहड़ी है साध संगत दी उह वात पुछी अपने भगत दा सत्कार कराया। सो जिहड़े कहिंदे करामात नहीं हुंदी करामात मनदे नहीं असीं साध संगत जी गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उस करामात दा प्रमाण दे रहे हन। अज भी जदों जाओ आप जी वेखोगे जिहड़े उत्थे मंदिर है ना उह मंदिर दा साध संगत जी जिहड़ियां नीहां ने ਉਹ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੱਜਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।

कायदे ठीक ढंग नाल पढ़ा नहीं रहा। ठीक ढंग नाल कितना भी पढ़ाया जाए, अगर कोई ठीक ढंग नाल पढ़ता ही नहीं तो फिर की होगा? फिर की होगा? प्रकृति अध्यापक बदल दी रही और इक्को ही श्रेणी दे सनातन मत दे चवी अवतार आए। गुरु नानक ने दस रूप धारण किए। धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अंगद देव जी दे रूप च, गुरु अमरदास जी दे रूप च, फिर गुरु रामदास जी दे रूप च, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप च, फिर छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे रूप च, फिर शमा जली गुरु, फिर बालक गुरु धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दीपक लेके अगे आए, फिर सच दी मशाल लेके अगे आए गुरु तेग बहादुर साहब जी, फिर रोशन जमीर बनके, रोशन चिराग बनके, महा सूरज बनके प्रगट होए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। जर दरस्त आए, ईसा आए, मुहम्मद आए, मूसा आए, एक कहण दे कोई संकोच नहीं, पर सारा अज भी अंधेरे च। मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे च। अवतारा दी धरती कैलाण वाली ए हिंदुस्तान, ए भारत अज लाउत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने, समस्त चीन अज भी अंधेरे च, अज भी अंधेरे च। सूफिया नू जन्म देन वाली ईरान दी धरती, शेख सादी, हाफिज, मौलाना रूम, शमस तवरेज, और इसे तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम, एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती दे च, ईरान अज भी प्रबल अंधकार दे च भटक रहे। हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उना मनुखां दे सामने जो अंधे ने, अंधे ने, अंधे ने। ए अंधा पन केड़ी गल दा है? क्या प्रकृति अंधिया नू जन्म देंदी है? नहीं, किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा सी देख सकदे हां जो जन्म तो अंधा होवे। प्रकृति ते सुजाकियां नू पैदा कर दी है। प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकदे, परमात्मा ते ज्ञानियां नू पैदा करदा है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया, थोड़ी देर बाद उठदा है और गऊ दे अस्तना दी तरफ जो है लपकदा है। इसनू ज्ञान किसने दे दिता? तेरी खुराक इना अस्तना दे च है, तेरा रिजक अस्तना दे च पे है, ते फिर इसनू चूंगण दा बोध किसने दे दिता? ये ते सब प्रकृति दे रही है। रिजक दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है, राजक रहीम दी तलाश दा बोध भी राजक रहीम दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। सबनू ज्ञान दे रहा है, सबनू सूझ दे रहा है। पर ये अंधापन क्यों है? एक ते ओ अंधा है जिसनू कह दईए जिदी अखां विच रोशनी है ही नहीं, एक ओ अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं, खोलदे ही नहीं, और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठदे ने, ताप गवा बैठ देने। और फिर जीवन इस तरह जीव देने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी जैसे उल्लू, सूरज चढ़िया हुआ है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। कि उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है कि उस मनुख नू की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है? कैसा ते नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या है तो कहने दे कोई संकोच नहीं, उल्लू अंधेरे दे जी रहे, अंधेरे दे जी रहे। बहुत ही मनुखता

ताते अदक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो पश ज्यों उदर भरों कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हों पतत तरों कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हों पतत तरों। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस सजे हुए गुरमत दीवान अंदर हजूर दी अमृत बाणी दा नितनेम सन्मान योग भाई बलदेव सिंह जी इलाही गुरबाणी दा कीर्तन असानू सरवण करा के गए जो पिछले दिना तो पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज हजूर दे पावन पवित्र मुबारक अमृत बचन जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन देहे मिलाए जियो। गुरु का सिख नजरी पै जावे ते अदब सत्कार दे नाल ओदे चरना विच झुका। दूसरा उस गुरसिख नूं अपने अंदर दी पीड़ा अंदर दी बिरथा वेदना प्रगट करा दसा कि मैनू गुरु सज्जन मिला दे। कल आपां विचार कीती सी कि सज्जन शब्द असीं रिश्तेदारां लई भी वरतने आ, सज्जन शब्द मित्रां लई भी वरतने हां, सज्जन शब्द सुहिरद लोकां लई भी वरतने का, और सज्जन शब्द दी वरतों गुरमुख महापुरख लई सतगुरु लई और पार ब्रह्म परमेश्वर लई भी है। कल दी विचार सी कि दुनिया दे सज्जन सिर्फ जीवत रहिंदिया होया ही साथ देंदे ने, पर कई वारी जिंदगी दे इहो जिहे मुकाम पड़ा आउंदे ने कि दुख मुसीबत कोई विपता आ जाए ते दुनिया दे सज्जन भी जिउंदे जी साथ छड़ जांदे। पर हजूर सच्चे पातशाह जी ने इस पवित्र बचन विच जिज्ञासु रूप को गुरु सज्जन दे मिलाप लई गुरसिख नूं बेनती कीती है। आओ
निर्धारित किए हुए समय अंदर रह के आप जी की सेवा कर सका। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब आप कृपा करो, अंदर दा टिका बख्श के आप ही विचार करा लवो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो और उच्चारण करो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कल विचार इस पवित्र बचन ते संपन्न कीती सी के संसार दे सज्जन स्वार्थ नूं मुख रख के अक्सर नेड़ता बनाउंदे, जिवें हजूर दे बचन ने कि जदों दुख आवे ये साथ छड़ जांदे। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र बचन दा एक प्रमाण सी कि संसार दे सज्जन ता ऐसे ने कि जिवें कहें दा भांडा काशी दा बर्तन उनू बाहरों देखिए धुप विच ते को चमकदा बहुत है, पर जे उस चमकदे हुए भांडे नूं दूरों देखिए ते अखां नूं ओदी निर्मलता ही ओदी शुद्धता सानू प्रतीत होवेगी। पर जिस वक्त उस बर्तन चमकदे हुए नूं कोई हथ विच पकड़ लवे ते अपने हथ दियां उंगलां अपना हाथ उस बर्तन दे विच मारे ते उस चमक विचों निकली कोई कालख बंदे दियां उंगलां नूं भी कालियां कर जांदी है, हाथ नूं भी कालियां कर दी है। इन बिन इसे तरह बार मुखी जड़े सज्जन ने उन्हां दी चमक उन्हां दे जबान दी शब्दावली इंज प्रतीत इंज भासदा है कि अंदरों बाहरों ये निर्मल ने, पर जदों उन्हां दे नजदीक हो के कुछ दिन वर्तन दा मौका मिलदा है ते उदों फिर उन्हां दे अंदर दी कालख वर्तन वाले दे सामने प्रगट हो जांदी। उस आप सारे बाणी पढ़न वाले गुरमुख हो हजूर दे पवित्र बचन ने के उजल के खां चिलकना घुट मकालड़ी मस धोत्या जूट ना उतर है जे सौ धोवा तिश, ए बार मुखी चमक है। पर नाल अगे बचन है कि सज्जन कौन, सज्जन सही नाल मैं चलद्या नाल चलन, सज्जन ओवे के जिथे मैं तुरा मेरे साथ होण ओ मेरे अंग संग होण, सज्जन सही नाल मैं चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन, जिथे लेखा पुछया जाए ओ सज्जन लेखे वाली थां ते भी पहुंच जाए। इत्थे सिर्फ एक बेनती है, ओ सज्जन समर्थ सतगुरु है। फिर शब्द दोहरा दिया कि दुनिया दे सज्जन खान पान तक ही सहमत ने, पर भाई गुरदास साहिब दे पवित्र कबित तो ये विचार शुरू करांगे कि गुरु सज्जन ऐसे ने कि जिन्ना को आपां प्यार करांगे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुताबिक सतगुरु दुगना नहीं तिगना नहीं सैकड़े नहीं, जिन्ना को तू मना प्यार करेगा गुरु उस तो करोड़ा गुणा वध तेनू प्यार कर, क्योंकि दुनिया दे सज्जन ऐसा नहीं कर सकते। तू एक गुणा करेगा वो करोड़ा गुणा करनगे, तू एक वरी गुरु नू भावना नाल चेते करेगा गुरु तेनू वार वार चेते करनगे, तू एक कौडी भी किते शरदा नाल, कौडी पुराने लोग वरदे सन, इउं कह लो एक पैनी शब्द वरत लईए एक पैसा वरत लईए, तू एक पैसा भी गुरु चरणा विच भावना नाल मत्था टेके ते गुरु इस दे बदले तेरे सामने दुनिया दे खजानिया दा ढेर ला देंगे, क्योंकि सतगुरु दया दे समुंदर ने। जदों कोई गुरु सज्जन नू प्यार करदा ते उस प्यार दा उत्तर करोड़ा गुणा गुरु वालों वध मिलदा।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ। ਇਹ ਦਵੱਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਚ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਕਰ, ਫਲਾਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟੇ, ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਕੋਈ ਲੇਤ ਹੈ। ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਿਠਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ, ਤੇ ਇਸ ਜਪ ਦੀ ਤਫੈਲਿਸ਼, ਇਸ ਜਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਦਇਆ ਨਿਧ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਆਪ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਆਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਧਕ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਨਾਲ ਕੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ, ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾ ਲਈ। ਜੋ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ,
जिन्नी देर तक उस अदारे वलो अपनी स्टैंप अपनी मोर ना लाई जाए, जे ओदी मोर लगी होवे ते सादा कागज भी प्रवान हो जाता है, जे मोर ना लगी होवे ते चमकदे हो कागज दी भी कोई वैल्यू नहीं, ओदी की कीमत है। यही कारण कि जदों असी आशा की वार पढ़ने सिर्फ आओ थोड़ा जा गुरु सब्जेक्ट संबंधी की ते हजूर ने पहली पौड़ी नाल तीन शलोक दर्ज किए, उन्हां विचों दो शलोक आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी दे ते एक शलोक सतगुरु गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दा। ते इस आसा की वार दी पहली पौड़ी नाल दर्ज तीन शलोकां नूं पढ़ के मनुख दे मन नूं इन्नी समझ पै जानी चाहीदी है कि अंदर दे पार उतारे लई जिंदगी दे पार उतारे लई गुरु तो बिना होर कोई चारा ही नहीं। सतगुरु दे ओ पवित्र शलोक पहले शलोक विच गुरु दी वडियाई कि सतगुरु कोल इन्नी समर्था है कि अख झमकण दी देर विच आम आदमी नूं दैवी गुणा नाल भरपूर करके देवते बना दिंदे ने, उहदे अंदर रूहानियत दा चानण हो जांदा है। दूजे शलोक विच कि जिन्ना मर्जी बाहर दा प्रकाश होवे जिन्ना मर्जी चानण होवे इथो तक कि भावें मनुखी शरीर दे अंदर चंद्रमा ते सूरज नाड़ियां ने, जे उन्हां राही भी बंदा अंदरों चानण दियां झलकां पाई जाके पर सच एवे आत्मक जीवन दा पेंडा उथे गुरु तो बिना खनेरा ही खनेरा है। बाहर दा चानण कुछ नहीं कर सकदा जिन्नी देर तक सतगुरु दे शब्द नूं ते गुरु दे चरणा विच अपने आप नूं समर्पित नहीं करदा। तीसरे शलोक विच जेड़े मन दे चलाक चुस्त चतराइयां वरतन वाले उन्हां नूं स्पष्ट किया कि ठीक है तुहाडे कोल पदार्थ ने, तुहाडे कोल धन है, घर ने, पदवियां ने, पर पता तां उदों लगेगा जदों साईं दे घर वी जाण दी गल चली। उत्थे उदाहरण हजूर ने नखसमे तिलां दी दित्ती कि जिन्हां तिलां नूं फुल वी लगे पत्ते वी सन फलियां वी बनियां, पर बदकिस्मती है कि दाने बन दी थां बुवाड़ अंदर ही सड़ गए, जिवें नखसमे तिल दी कोई सार नहीं इसे तरह गुरु तो बिना तेरे अंदर दी सार भी किसे नहीं लै। गुरु सज्जन लभना ही पैणा आख हजूर दे पवित्र बचन तिन्ने शलोक के बलखारी गुर आपने अपने गुरु तो कुर्बान जावा बलखार जावा, बलखारी गुर आपने द्योहाड़ी सदवाह। एक दिन विच सैकड़े वारी हुण कुर्बान जान दा मतलब के गुरु दे शब्द नूं जपना गुरु दे बचन नूं कमाना। बलखारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वाह देरी नहीं लगी। उन्हें एक खिन विच के आम बंदे सन उन्हां नूं दैवी गुणा नाल भरपूर कर दिता करत न लागी वाह। दूसरा बचन जे सौ चंदा उगमह सैकड़े चंद्रमा अपनी चाननी बखेर सूरज चढ़े हजार हजारा सूरज दिया किरना रोशनी आ जाए पर एते चानन खोंदिया गुर बिन घोर आंदा। इना प्रकाश होवे पर अंदर फिर भी खनेरे विच बंदा डूबे चानन खै नहीं एते चानन खोंदिया गुर बिन घोर आंदा। तीसरा बचन धन गुरु नानक साहब जी दा के नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत। गुरु नूं चेते ना करना अपने मन दी सियाणप अपने अंदर दी सुचेतता। नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआर जो सुन्ये अंदर खेत। जिवें सुन्ये खेत विच यूं कह लिए कि बुआर तिल नूं छड्ड दिता जांदा है जिन्हां विच दाने ने थां उन्हां नूं घर मिलदा है ते जिन्हां विच दाणी नहीं पै उन्हां ता सड़ना है। छुट्टे तिल गुवाड़ ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ ना फलियां फुलियां बपड़े पी तन विच सवा। बाहर दा बहुत कुछ मिलिया पर अंदर जे नाम नहीं मालक दी बंदगी नहीं सच एवे
उस बुआर तिल की तरह शरीर है, परमात्मा ते सतगुरु की कृपा तो बिना शरीर की हकीकी बन। खैर जो बेनती दास करनी चाहता है, जदों गुरु सज्जन मिलता है, हजूर ने जो बाणी विच बख्शिश की, भावें ये अगे जाके बचन आना, ये सारिया गल्लां दा उत्तर इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कहे सोकार कमाए जियो। धन गुरु अर्जुन देव जी दे पवित्र बचन सुखमनी साहब जी का वह पदा कि सतगुरु कृपा करते ने, वह सब नू आप नू पदा चेते है कि गुरु सज्जन सिख दी रूहानियत पक्षों भी शरीरक पक्षों भी जिंदगी दे हर पड़ा ते अपने सिख दी प्रतपालना करते, उहदी संभाल करते। दूसरा, कली प्रतपालना ही नहीं, सतगुरु कृपा करते ने कि सिख दे अंदर दी जो दुरमत है, भैड़ी मत है, उहदा भी नाश कर देंदे, क्योंकि कल नू बचन आउणा है कि मेरा मन टिक जाए, अंदर दियां चित विरतियां अंदर दी दुरमत ही है जिहड़ी मन नू खंडांदी है, दुरमत ना होवे ते मन अपने आप टिक ना जाए। हजूर ने फरमाया कि सतगुर सिख की करै प्रतपाल, ऐसा गुरु सज्जन कि सतगुरु अपने सिख दी प्रतपालना कर दे। सेवक को गुर सदा दयालु, एक घड़ी नहीं, सतगुरु सदा ही अपने सिख उत्ते दयालु ने। यह गल वखरी कि आपां कह दिंदे हां कि गुरु नदर करनगे, देखो दयालता हर घड़ी वरदी है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे जिद्दन जिहो जी तेरी भावना हुंदी है, उह कोई तैनू गुरु तो मिल जांदा। तू अपनी भावना तां देख, सूरज तां तेरे दरवाजे अगे आ गया, पर जे अंदरों दरवाजा बंद करके कहें कि सूरज दियां किरणां नहीं आईयां, किरणां तां दहलीज ते आ गईयां, तू दरवाजा खोल, किरणां अंदर प्रवेश कर जाणगी। साहिब दे पवित्र बचन ने कि सतगुरु अपने सिख उत्ते दयालु ने। हुण प्रतपालना किवें, इत्थे आओ थोड़ा जिहा गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र बचना विचों देखिए। सिर मैं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों हजूर दे पवित्र बचना विचों बेनती करनी चाहना हां, क्योंकि गुरबाणी दी व्याख्या खुद गुरबाणी करदी है। भावें असीं अर्थ करने हां, पर जेड़े गुरमुख गुरु शब्द दे अभ्यासी हो जाण, ठीक है, कोश विच जेड़े अर्थ दिते ने वह बोधक तल ते थोड़ा बहुत ही सोझी देंदे ने, थोड़ा बहुत मैं शब्द वरत्या है, पर जदो आत्मक जीवन कोई कमांदा है, जेड़े ओहदे जीवन विचों बाणी दे अर्थ निकलदे ने, उहना अर्थां नूं शायद कोई ज्ञानी कोई बाहर दा लिखारी ओहदी पकड़ तो ही बाहर हुंदे। हुण सतगुरु अपने सिख दी प्रतपालना करदे ते महाराज जी ने बाणी च फरमाया ओ किवें, क्योंकि असी संसार विच विचरने हैं कि जिन्नी देर तक विचरना है शरीर दियां लोड़ां दी, इहदी भुख इहदी प्यास इहदे वर्तन लई भी। हजूर ने कहा सतगुरु अपने सिख दी पहली गल प्रतपालना किवें, ओ कई वारी दास बेनती करदा हुंदा है कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच एक मनुखी मां ते एक परिंदा, एक ओ मां जिन्हों परमात्मा ने ममता दिती है पर मनुखी शरीर रखी, ओदे कोल दो पंख ने दो खंभ ने, उन्हां नाल ओ उडारी मारदी है। मनुखी मां जिवें अपने बच्चे नू संभालदी है, सतगुरु इसे तरह अपने सिख दी प्रतपालना कर दे। हुण बच्चा जेड़ा है ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਨੀਂਦ

मेरे सीने विचों अमृत दुध अपने आप ही सिम पैंदा है ते मेरे सीने दा दुध ये कह रहा है मेरे बच्चे नूं भुख है मैं सुते नूं उठा के दुध पियानी हां। सच एवे गुरु सज्जन ऐसे ने कि कई बारी मान लो कि असी बोल ना सकीए सानू अपनी लोड़ थोड़ दा पता ना होवे जिवें मां बच्चे दी भुख नूं जानदी है समर्थ सतगुरु सिख दे अंदर दी भावना नूं जानदे। हजूर दे पवित्र बचन असी पढ़ने हां कि ओ ज्यो जननी सुत जन पालती ओनू जन्म दे के पाल दिख है रख है नदर मजार ओनू अखा सामने रख दिख है। देखो सतगुरु इस तरह ज्यो जननी सुत जन पालती रख है नदर मजार अंतर बार मुख दे गरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता खर प्रीत प्यार। इसे तरह सतगुरु अपने सिख नूं परमात्मा दी प्रीत परमात्मा दा प्यार दे के अपनी जिंद तो उनू संभाल दे। पहली गल के मनुखी मां दी तरह गुरु सिख नूं संभाल दे। कई बारी मन च आउंदा है जे मान लो हुण धन गुरु ग्रंथ साहिब तक आपां गल करांगे शब्द दे सिद्धांत नाल जे दूरी भी बन जाए एक मनुखी मां मानव नूं जन्म देने वाली मां वो तां प्रतपालना तां करेगी जे नदर विच रखेगी तां उहदी नदर विच बच्चा है सामने है ते जे मान लो कि शरीरक तौर ते मां दी ते बच्चे दी दूरी बन जाए फिर प्रतपालना किवें करेगी। धरातल दे तौर ते जमीनी तौर ते दूरी बन जाए शरीरक तौर ते साहिब ने कहा नहीं इस तो अगे एक होर कृपा है फिर सिमरन राही ओ बरकता मिलदियां ने। जिवें एक कूंज भी मां है ओ अपने बच्चियां नूं छड़ के सैकड़े को दूर चली गई पर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचन ने कि जदों ओ दाणा चुणदी है अपने बच्चे नूं नाल ही चेते कर लैंदी है। चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे जां हजूर दे बचन के उड़ै उड़ आवै सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया ओ कूंज मन मह सिमरन करिया। साहिब ने कहा जिवें एक कूंज दा सिमरन अपने बच्चे दे प्रति ओनी जमीनी दूरी भी होवे ते अपने बच्चे दी प्रतपालना कर जांदा है सिख किते भी होवे जदों साधना करदिया इहदे अंदर सिमरन चल पवे सिमरन टिक जाए सच एवे ओ धरातल दी दूरी दूरी भी नहीं रहिंदी कूंज भावे दूर रहिंदी है जदों सिमरन विच कोई टिक जांदा है गुरु ओहदे अंग संग हुंदा। हजूर ने बख्शिश कीती कहन लगे जैसे गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली कूंज जैसे गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओ चीत राख है पीछे बिच बचरे नित खिरदा सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जी नाली। सतगुरु जिवें कूंज रख दीए इसे तरह अपने सिख नूं रख दे। गुरु सज्जन कृपा की कर दे पावे पदा आप सब नूं चेते कह बाणी पढ़न वाले को थोड़ा जा टेक के अर्थ सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेव को गुर सदा दया सदा ही दयालु ने। ठीक है भावे बाणी च शब्द भी ने कि सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कबू झूरी है सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। पर सतगुरु दे बारे एक बचन हजूर ने फरमाया कि सतगुरु सदा दयाल है भाई केड़ी घड़ी जदो गुरु जी दयालु लिख ओ ता दया निद ने दया दे घर ने दयालु ने सतगुरु सदा दयाल है भाई विण भागा क्या पाई है एक नदर कर देखे सब ऊपर जेहा पाओ त्या फल पाई जिहो जी भावना है। साहिब दे बचन सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेव को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल खिरे भैड़ी मत नू भैड़ी मायल नू दूर कर देंदे
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਔਰ ਲੁਭਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੋਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲਗਹਿ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਭ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਭੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ जल में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लगे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
0: जैसे मैल न लगे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के धाई महान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते उच्चा
0: मन अपने सत्य नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
0: नानक जन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई
0: है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देखे भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्य रूप न देखे नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विद्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्रिय जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म में सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख में जाने अस्तूर
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उरता है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतारे
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कित न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम किस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर का परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सो जी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हिता वै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित कर रखे तैसा तन्ना
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सो ही फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वेद के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अपिक आत्म ने कोर,
1: कई कोट पर दर्प को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पात्र वृक न बजाए,
1: कई कोट पवन पानी बसंतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस तामस सातक,
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर दीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर मृगाच,
1: साते नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिप्त रे भरपूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहुत जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सब किश प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भय बैरागी,
0: राम नाम संग तिन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खो जंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्र प्यास,
0: जिनको मिलियो प्रभ विनास,
1: कई कोट मांग है सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अरखंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जग की न विस्तार,
1: कई बार पसरियो पासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: जिनहो वत्या तम प्रगास,
1: कई कोट तत् के बेते,
0: सदन हारे एको नित्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
0: अमर भय सर सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गाव है,
0: आत्म रस सुख सहज समावे,
1: अपने जन को साथ साथ समारी,
0: नानको हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: करण करावन करना जोग,
0: ज्योत भावे सोई होग,
1: फिर मैं ताप उताप नहारा,
0: अंत नहीं किश पारा वारा,
1: हुक्मे धार अधार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
0: नानक सब में रहा समाई,
1: प्रभ भावे मानो गत पावे,
0: प्रभ भावे ता पात्र त्रावे,
1: प्रभ भावे बिन सास ते राखे,
0: प्रभ भावे ता हर गुण पाखे,
1: प्रभ भावे ता पत उधारे,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी,
0: खेले से अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि और न आवे,
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योत भावे सोई करावे,
1: किसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योत भावे सोई करे,
1: मन जानत विखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूला दह जिस धावे,
0: नमक माहे चार कुंठ फिर आवे,
1: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे,
0: नानक ते जन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दर तिस प्रगट आवे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे जगदीश,
1: जियो पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीव देख बढ़ाई,
1: इसका बल ना ही इस हाथ,
0: कल करावन सब को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
0: ज्योत स्वभाव है सोई फन थी,
1: कब हूँ ऊंच नीच मैं बस है,
0: कब हूँ शोक हर करंग हस है,
1: कब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: कब हूँ उपकाश प्याल,
1: कब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: कब हूँ नृत्य करे बहु भांत,
0: कब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: कब हूँ महाक्रोध विकराल,
0: कब हूँ सर्व की होतरवाल,
1: कब हूँ होए बह बड़ राज,
0: कभू भिखारी नीच का साजा,
1: कभू अब कीर्त में आवे,
0: कभू भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कभू होए पंडित करे बख्यान,
0: कभू मौन तारी लावे ध्यान,
1: कभू तट तीर्थ स्नान,
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कभू पीठ हस्त पतंग होए जिया,
0: अनक जौन परमे परमिया,
1: नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे,
0: जो प्रभ भावे तवे न जावे,
1: जो भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कभू साल संगति पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसे पर ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना,
0: जो ती संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गवन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत बिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्ति आ गया सुख पावे
1: धनवंता हो कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्प की रेन जहाँ का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस कौशक नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तार है को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना न कहा छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: उदय देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न पिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पेन का हो किस होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटकट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत हो ही मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक सत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक सत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: आपन बीजा

0: पार,
1: सच पर तैसा चापा सार,
0: पार ब्रह्म जन सच कर जाता,
1: नानक सो जन सच समाता। श्लोक
0: रूप नरेख नरंग किछ, त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न,
1: सब बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी
0: अवनासी ब्रह्म मन मह राख,
1: मानु की तू प्रीत त्याग,
0: इससे परे नाहीं किछ होए,
1: सब निरंतर एको सोए,
0: आपे बिना आपे दाना,
1: गैर गंभीर गहीर सजाना,
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद,
1: पर ध्यान दयाल बख्शंद,
0: साथ तेरे की चरनी पाऊं,
1: नानक कै मन हे नराव,
0: मनसा पूर्ण सरनाम जोग,
1: कर पाया सोई हो,
0: हरन भरम जाका नेत्र फोर,
1: इसका मंत्र न जाने होर,
0: अंद रूप मंगल सद जाके,
1: सर्व थोक सुनिए करता कै,
0: राज महराज जोग मह जोगी,
1: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी,
0: त्याई त्याई भक्ता हूं सुख पाया,
1: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया,
0: जाकी लीला कीमत नाहे,
1: सगल देव हारे अवगाहे,
0: पिता का जन्म के जाने पूत,
1: सगल परोही अपने सूत,
0: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे,
1: जनदास नाम ते आवे से,
0: देह गुण में जाको परमाए,
1: जन्म मरे फिर आवे जाए,
0: पूज नीच तिसके स्थान,
1: जैसा जनावे तैसा नानक जान,
0: नाना रूप नाना जाके रंग,
1: नाना पेख करे एक रंग,
0: नाना विद कीनो विसार,
1: बाबे बनासी एक अंकार,
0: नाना चलित करे थिन माहे,
1: पूर रहे पूर्ण सब ठाए,
0: नाना विद कर बंत बनाई,
1: अपनी कीमते आपे पाई,
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ,
1: जब जब जीवे नानक हर नाम,
0: नाम के तारे सगले जंत,
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड,
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण,
1: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान,
0: नाम के तारे आकाश पाताल,
1: नाम के तारे सगले आकार,
0: नाम के तारे पुरिया सब भवन,
1: नाम के संग उतरे सुन श्रवण,
0: हर कृपा जिस अपने नाम लाए,
1: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए,
0: रूप सत जाका सत स्थान,
1: सत के बल प्रधान,
0: करतूत सत सत जाकी वाणी,
1: सत पुरुष सब माहे समानी,
0: सत कर्म जाकी रचना सत,
1: मूल सत सत उत्पत,
0: सत करणी निर्मल निर्मली,
1: जिसे बुझाए तिसे सब भली,
0: सत नाम प्रकाश खुदाई,
1: विश्वास सत नाम गुरते पाई,
0: सत वचन साधु उपदेश,
1: सत ते जल जाके हृदय प्रवेश,
0: सत नित भू जय दे कोई,
1: नाम जबरता की गत होए,
0: आप सत की असर सत,
1: आपे जाने अपने मित गत,
0: जिसकी सिठ सो करना हार,
1: अवर न बूझ करत विचार,
0: करते की मित न जाने किया,
1: नानक जोत स्वभाव सो वर्तिया,
0: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद,
1: जिन बुझा तिस आया स्वाद,
0: सबके रंग राज जन रहे,
1: गुर के वचन पदार्थ लहे,
0: होए दाते दुख काटन हार,
1: जाके संगत रह संसार,
0: जन का सेवक सो वट भागी,
1: जन के संग एक लिव लागी,
0: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे,
1: गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक
0: आद सच जुगाद सच,
1: पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी
0: चरण सत सत प्रसन्न हार,
1: पूजा सत सत सेवदार,
0: दर्शन सत सत पेकन हार,
1: नाम सत सत त्यावन हार,
0: आप सत सत सब धारी,
1: आपे गुणकारी,
0: शब्द सत सत प्रभक्ता,
1: सुरत सत सत जस सुनता,
0: भुजन हार को सत सब होए,
1: नानक सत सत प्रभ सोए,
0: सत स्वरूप हृदय जन मानिया,
1: कर्ण करावन तिन मूल पछाने,
0: कर हृदय विश्वास प्रभाया,
1: तत ज्ञान ते समान प्रगटाया,
0: भय ते निरपो होए बसाना,
1: जिसते उपजे ते समाहे समाना,
0: बस माही ले बस कटाई,
1: ताको पिंड न कहना जाई,
0: बूझे बूझ नहार विवेक,
1: नारायण मिले नानक एक,
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी,
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
0: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत,
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत,
0: ठाकुर को सेवक जाने संग,
1: प्रभु का सेवक नाम कै रंग,
0: सेवक को प्रभु पालन हारा,
1: सेवक की रखे निरंकारा,
0: सो सेवक जिस दया प्रभु धारे,
1: नानक सो सेवक सास सास समारे,
0: अपने जान का पर्दा ढक है,
1: अपने सेवक की सर पर रखे,
0: अपने दास को देव डाई,
1: अपने सेवक को नाम जपाई,
0: अपने सेवक की आप पत्रक है,
1: ताकि कदमित कोई न लख है,
0: रब के सेवक को न पहुँचे,
1: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे,
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
1: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया,
0: नीकी कीरी मह कर रख है,
1: भस्म कर एलस कर कोट लाख,
0: जिसका शासन काटते आप,
1: ताको राखत दे कर हाथ,
0: मानस जतन करत बहु भांत,
1: जिसके कर्तव्य प्रथे जात,
0: मारे न रख है अवर न कोई,
1: सर्व जिया का रखा सोए,
0: काहे सोच कर हेरे प्राणी,
1: जप नानक प्रभु लख बडानी,
0: बारंबार बार प्रभु जपी है,
1: मते मन तन तरपी है,
0: नाम रत्न जन गुरमुख पाया,
1: जिसके शेवर न ही दृष्टाया,
0: नाम धन नामो रूप रंग,
1: नामो सुखर नाम का संग,
0: नाम रस जो जन तृप्ताने,
1: मंतन नाम में नाम समाने,
0: ऊठ बैठ सोवत नाम,
1: कहो नानक जन कै सद काम,
0: बोलो जस जीवा दिन रात,
1: रबे अपने जन की नींदा,
0: करे भक्ति आत्म कह चाय,
1: रबे अपने से रहे समाई,
0: जो हो वाह हो वत सो जाने,
1: रबे अपने का हुक्म पछाने,
0: इसकी महिमा कौन बखानो,
1: इसका गुण कह एक न जानो,
0: आठ पैर प्रभ से हजूरे,
1: कहो नानक से जन पूरे,
0: मर मेरे तिन की ओट ले,
1: मंतन अपना तिन जन दे,
0: जिन जने अपना प्रभु पछाता,
1: सो जन सर्व थोक का दाता,
0: किसकी शरण सर्व सुख पावे,
1: इसके दर्श सब पाप मिटावे,
0: अवर सियान सगली छाड,
1: जिस जन की तू सेवा लाग,
0: आप न जान न हो भी तेरा,
1: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा।
0: श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सत गुर तिस का नाम,
1: तिसके ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਸੇਵ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ
0: ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ
1: ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ
1: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ
1: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ
1: ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ
0: ਆਪ ਉਸ ਕੋ ਕਰ ਕਸ਼ ਨਾ ਜਨਾਵੈ
1: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ
0: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ
1: ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
0: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ
1: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ
0: ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ
1: ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ
0: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ
1: ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾ
0: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ
1: ਆਜ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਏਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ
0: ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਭਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ
1: ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਪੁਨੀਤ
1: ਵਰਸ਼ਤ ਚਰਨਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
0: ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ
0: ਸੁਣ ਕਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ
1: ਮਨ ਸਤੋਖਾ ਤੰਪਤ ਜਾਣੈ
0: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਕਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ
1: ਅਮਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ
0: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ
1: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
0: ਜੇ ਵਾਏ ਕੋ ਸਤ ਅਨੇਕ
1: ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ
0: ਕਾਹੂੰ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ
1: ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ
0: ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ
0: ਮਨਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰੇ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ
0: ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਪੁਰੇ ਆਪਣੇ
1: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ
0: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰਸ ਹੋਏ
0: ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼
1: ਜਾਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ
1: ਸੱਚ ਉਪਦੇਸੇ ਵਕੋ ਦੇ
0: ਉਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ
1: ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹਰ ਹਰ ਏਕ
0: ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ
1: ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਬਹੁ ਦੁਖਤਾ ਤੇ ਨਾਸੇ
0: ਸਤ ਮਾਹੀ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ
1: ਅਣਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ
0: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਠੇ ਅੰਦੇਸੇ
1: ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ
0: ਹੋ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੈ
1: ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਦੇਖੈ ਨਸੇ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ
0: ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ
1: ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਸਰਵਣ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੋਈ
1: ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ
0: ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ
1: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ
0: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ
0: ਬੋਧ ਬੋਧ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ
1: ਭਾਇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧਕ ਸੰਗ
0: ਰਾਜ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ
1: ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ
0: ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ
1: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ
1: ਏਕ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
0: ਅਵਰੋ ਪਾਪ ਸਮੀਤ ਪਸਾਰੋ
1: ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿਦ ਮੈਂ ਉਰਧਾਰੋ
0: ਕਰਨ ਕਾਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ
1: ਨਿਰ ਕਰ ਗਹ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ
0: ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋ ਭਗਵੰਤ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ
0: ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ
1: ਸਰਵ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੀ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਪੁੰਟ ਉੱਠ ਧਾਵੇ
1: ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੇ
0: ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਂਚੇ ਮੀਤ
1: ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ
0: ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ
1: ਸਾਸੋ ਬਾਪਤ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ
0: ਅਨ ਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ
1: ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ
0: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
1: ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਈ
1: ਦੇਹ ਸਤਾਵ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾਏ
0: ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਈ
1: ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਹਰ ਸੋਏ
0: ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ
0: ਹੋ ਬਿਨ ਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ
1: ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
0: ਹਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਵਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ
1: ਤੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ
0: ਹੱਥ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ
1: ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ
0: ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ
1: ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ
0: ਕਿਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ
1: ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ
0: ਅਨ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ
1: ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ
0: ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ
1: ਮਰ ਵੰਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
0: ਸੰਗ ਨ ਚਾਰ ਸਥੇ ਰਹਿ ਧਨਾ
1: ਜਲ ਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
0: ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਹਰ ਬਨੇਤਾ
1: ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਾਥਾ
0: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਾਰ
1: ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ
0: ਆਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ
1: ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ
0: ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਤਿਸ ਬੁਝੈ ਨਾ ਬਗਾਨਾ
1: ਨਾਮ ਪਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
0: ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਏ ਆਨੇ
1: ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਭਉ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੀ
0: ਭਗਤ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ
1: ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤਮਾਰੋ ਚੀਤ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ
1: ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ
0: ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
1: ਸੰਤ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ
0: ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ
1: ਸਹਿ ਸਵਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ
0: ਗੁਣ ਗਾਵ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ
1: ਨਿਰਸ ਦਾਇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ
0: ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖਨਾਲ
1: ਸਾਧ ਗ੍ਰਾਸਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ
0: ਛਾੜ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਮਨਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਾਵੈ ਸਸਤਨਾ
0: ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਹਾਂ ਸਬਦਰ ਗਾ ਜੈਕਾਰ
0: ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ
1: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ
0: ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ
1: ਏਕ ਸਮਨ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ
0: ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ
1: ਮਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ
0: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ
1: ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ
0: ਅੰਤ ਵਿਸਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ
1: ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸ਼ਟ ਗਏ
0: ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ
0: ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਕਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਈ
1: नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी।
0: जाचक जन जाचे प्रभ दान
1: कृपा देव हर नाम
0: साध जना की मांगो धूर
1: पार ब्रह्म मेरी शब्दा पूर
0: सदा सदा प्रभ की गुण गावो
1: सास सास प्रभ तुम्हें ध्याव
0: चरण कमल से लागे प्रीत
1: करो प्रभ की नित नीत
0: एकोट एको आधार
1: नानक मांगे नाम प्रभ सार
0: प्रभ की दृष्ट महासुख होए
1: रस पावे बिरला कोए
0: जिन चाख्या से जान तृप्ताने
1: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने
0: सुपार परे प्रेम रस रंग
1: चाओ साधक संग
0: परि शरण आन सत्याग
1: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग
0: बड़ भागी जपया प्रभ सोए
1: नानक नावर ते सुखोए
0: सेवक की मनसा पूरी पई
1: सतगुर दे निर्मल मत लई
0: जान को प्रभ होए दयाल
1: सेवक की नसदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन पया
1: जन्म मरण दुख भ्रम गया
0: जिच पुन्नी सरदा सा पूरी
1: गव रहया सत्संग हजूरी
0: जिसका सा तिन लिया मिलाए
1: नानक भक्ति नाम समाए
0: सोक्यो बिसरै जे काल न भानै
1: सोक्यो बिसरै जे किया जानै
0: सोक्यो बिसरै जे सब कुछ दिया
1: सोक्यो बिसरै जे जीवन जिया
0: सोक्यो बिसरै जे अग्न मह राखै
1: गुर प्रसाद को बिरला लख है
0: सोक्यो बिसरै जे बिख ते काटै
1: जनो जनम का टूटा गंढ है
0: गुर पूरै तत एह बुझाया
1: प्रभ अपना नानक जन ध्याया
0: साजन संत करो एह काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अपना नाम जपावो
0: भगत भाई तरिया संसार
1: भगती तन होशी सार
0: सर्व कल्याण सूप निध नाम
1: मूढ़ जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का होवत नास
1: नानक नाम जपो गुण पास
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ
1: मंत्र अंतर एही स्वाव
0: नेत्रों पेख दर सुख होए
1: मन बिकसै साध चरण धोए
0: भक्त जना कै मन तन रंग
1: बिरला को पावे संग
0: एक बस दीजै करमया
1: गुर प्रसाद नाम जप लिया
0: ताकि उपमा कही न जाए
1: नानक रहया सर्व समाए
0: प्रभ बख्शंत दीन दयाल
1: भगत बछल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व घटा करत प्रतपाल
0: आद पुरख कारण करतार
1: भक्त जना के प्राण आधार
0: जो जो जपै सो होई पुनीत
1: भगत पाए लावे मन हीत
0: हम निर्गुण यार नीच अजान
1: नानक तुम्हारी शरण पुरख भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग बढ़ियाई
1: हर के नाम की कथा मन पाई
0: वो भोजन का प्रसंगीत
1: रसना जपती हर हर नीत
0: भली सो करनी सो पा धनवंत
1: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत
0: साध संत प्रभ देहो निवास
1: सर्व सुख नानक परगा श्लोक
0: स्वर्गुण निर्गुण निरंकार
1: सुन समाधि आप अपन किया नानका आप ही फिर जाप अष्टपदी
0: जब अकार हो कछ न दिष्टेता
1: आपन तब कहते होता
0: जब धारी आपन सुन समाद
1: बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वर्ण चेह न जापत
1: जब हर किसो को किस व्यापत
0: जब आपन आप आर ब्रह्म
1: मोह कहा किसो होवत परम
0: आपन खेल आप वर्ती जा
1: नान करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल धनी
1: तब बंद मुगत कहो किस कहो कनी
0: जब एक ही हर अगम अपार
1: तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाई
1: तब शिव शक्त कहो हित ठाए
0: जब आप ही आप अपनी जोत धरै
1: तब कवन निडर कवन कत डरै
0: आपन चलित आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अवनासी सुख आपन आसन
1: तब जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
1: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचरजा
1: नानक अपन रूप आप ही उपर जा
0: जय निर्मल पुरख पत होता
1: जय बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: जय कौन कमान कौन अपमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: जय शल छिद्र लगत कौ कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै
1: जय किसै भूख कवन तृप्तावै
0: करन करावन करने हार
1: नानक करते का नहि समार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई
0: जय सर्व कला आपे प्रवीण
1: जय वेदक देव कहां को चीन
0: जब अपन आप पुरतार है
1: शगन अपशगन कहां विचार है
0: जय अपन ऊच अपन आप नेरा
1: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: विस्मन विस्म रहे विस्माद
1: नानक अपनी गत जान हो आप
0: जय छल अशेद अभेद समाया
1: वहां किसे व्याप्त माया
0: आप उसको आप ही आदेश
1: गुरु का ना ही प्रवेश
0: जय एक एक एक भगवंता
1: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जय अपन आप पतियारा
1: जय कौन कथा कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा
1: नानक आप उसको आप पहुंचा
0: जय आप रचियो प्रपंच आकार
1: गुण मैं की नो विस्तार
0: पाप पुन तह पई कहावत
1: ओ नरक को स्वर्ग विशावत
0: काल जाल माया जंजाल
1: मैं मोह परम पै भार
0: दुख सुख मान अपमान
1: अनक प्रकार की उपख्यान
0: अपन खेल आप कर देख है
1: खेल संकोचे तो नानक एक है
0: जय अवगत भगत है आप
1: जय पसरे पसार संत प्रताप
0: तुम पाप का आप ही धनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आप ही कौतुक करे अनंत जोज
1: आप ही रस भोगन निर्जोग
0: जिस भाव है तिस आपन नाई लावे
1: जिस भाव है तिस खेल खिलावे
0: बेशुमार अथाह अगंत अतुल है
1: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक
0: दी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार
1: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार अष्टपदी
0: आप कथा आप सुन हार
1: आपे एक आप विस्तार
0: जांत स्वभाव है तां श्रेष्ठ उपाय
1: अपने भाने लय समाए
0: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
1: आपन सूत सब जगत परोए
0: जां को प्राप्ति हो आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत् पै बेता
1: नानक सगल सृष्ट का जेता
0: जी जंत्र सब तां कै हाथ
1: दीन दयाल अनाथ को नाथ
0: जिस राखै तिस को न मारे
1: सो मुह आज समनो बिसारे
0: तिस सच अवर कहां को जाए
1: सब सिर एक निरंजन राय
0: की जुक्त जां कै सब हाथ
1: अंतर बाहर जान साथ
0: गुण निधान बेअंत अपार
1: नानक दास सदा बलहार
0: पूर्ण पूर रहे दयाल
1: सब पर होवत कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप
1: अंतर जामी रहो व्याप
0: प्रत पालै जी अनुभव भांत
1: जो जो रचियो सो तिसै ध्यात
0: जिस भावै तिस लय मिलाए
1: भगत करै हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया
1: करन हार नानक एक जाने
0: जन लागा हर एक कै नाई
1: जिसकी आस न पृथ्वी जाए
0: सेवक को सेवा बन आई
1: हुकम बोझ परम पद पाए
0: इससे ऊपर नहीं भी चार
1: जाकै मन बसया निरंकार
0: बंधन तोर भय निर्वैर
1: हर दिन पूजा गुर के पैर
0: ए लोक सुखी ए परलोक सुहेले
1: नानक हर प्रभ आपे मेले
0: साथ संग मिल करहु आनंद
1: उनका वो प्रभ परमानंद
0: राम नाम तत करहु विचार
1: दुर्लभ देखा करहु उधार
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ
1: प्राण तरन का एह स्वाव
0: आठ पैर प्रति को नेरा
1: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
0: सुख उपदेश हृदय बसावो
1: मन इच्छे नानक फल पावो
0: हलत पलत दो लेहो सवार
1: राम नाम अंतर उतार
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया
1: मन बसै ते साच परीखिया
0: मन तर नाम जपो लिब लाए
1: दुख दर्द मन ते पहो जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी
1: दरगह निभै खेप तुम्हारी
0: एक काटे कर रखो मन माहे
1: नानक पहुर न आवे जाहे
0: जिससे दूर कहाँ को जाए
1: उबरे राखन हार ते आए
0: निर भव जपै सकल भव मिटै
1: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै
0: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख
1: नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै हंकार
1: जिस जन को कोई न पहुंचन हार
0: सिर उपर ठाड़ा गुरसूरा
1: नानक ताके कार्ज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
1: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: भान सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसै सुहोत निहाल
1: जाकै निकट न आवत काल
0: अमर भये अमरा पद पाया
1: साध संग नानक हर ध्याया श्लोक
0: ज्ञान निरंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
1: हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ दीठा
1: ना प्रभु का लागा मीठा
0: सकल समिग्री एक घट माहे
1: अनक रंग नाना दृष्टा है
0: नौ नदी अमृत प्रभ का नाम
1: यही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहद तहनाद
1: कह न जाइए चरज विस्मार
0: तिन देखिया जिस आप दिखाए
1: नानक ते दर सोजी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: घट घट व्याप रहा भगवंत
0: धर्म माहे आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: मन दिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: संतर माहे
1: चार कुंट दिशा समाहे
0: इसके भिन्न नहीं को ठाओ
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमरत मैं देख
1: सस्य सूर न खतरे मैं एक
0: वाणी प्रभ की सबको बोले
1: आप डोल न कब हूँ डोले
0: सर्व कला कर खेल खेल
1: बोल न पाइये गुण अमोल
0: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत
1: धार रहे स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद भ्रम का नाश
1: नानक तिन मैं एहो विश्वास
0: संत जना का देखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने शुभ वचन
1: सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिसकी एह रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मानै
1: करन करावन हार प्रभ जानै
0: अंतर बसे बाहर पियो ही
1: नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत
1: जिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: इस भावै तां करे विसार
1: इस भावै तां एकंकार
0: अनक कला लखी नह जाए
1: जिस भावै तिस लय मिलाए
0: कवन निकट कवन कहिया दूर
1: आप प्रभुर
0: अंतरगत जिस आप जनाए
1: नानक तिस जन आप बुझाए
0: सर्व भूत आप वरतारा
1: सर्व नैन आप खनहारा
0: सगल समग्री जा का तना
1: अपन जस आप ही सना
0: आवन जाने खेल बनाया
1: आज्ञाकारी कीनी माया
0: सब कै मत अलिप्त हो रह
1: जो किश कहना सो आपे कह
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाई
1: नानक जापा वैता लय समाए
0: इससे होई सुना ही बुरा
1: उरे कहो किने कश करा
0: आप भला करतूत आत्मी की
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साज धारी सब साच
1: ओत पोते अपन संग राज
0: ताकी गर्मित कही न जाए
1: दूसर होए ता सोजी पाए
0: इसका किया सब प्रवान
1: गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए
1: आप मलाए लय प्रभ सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पत वंत
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
0: धन धन धन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया
0: जानिया मन का यह सुआ
1: जन के संग आवे नाम
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोबिंद
0: मन अंतर की उतरै चिंद
1: आस अनित त्याग को तरंग
0: संत जना के तोर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर लेहु भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रैलोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आई
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जाल विकास के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: ओट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरण ता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते

पौड़ी बिन सतगुरु कने ना पायो, बिन सतगुरु कने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की टिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू देहत से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया जिन कह।

0: ला पर पर गड्डी लदिए पर पर परिए साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: चटकाल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों कुबेदार जे को तो कुबेर तिहुरत होए नान पाहे बारा को रंग ना सोए पैवज खुम चढ़ाई है सरम पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछी है बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे खुके वदा गवे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार तरमी तर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने हैं षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: महला पहला बुद्धि सुबुज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात न जोर है।

पहला दुख दारू सुख रोग पे जा सुकाम ना होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जोत में जा तकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा सैभ सुस्वा

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत, दरगे अंदर पाइए तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी, फलके थुक पवे निदारी। तग न पैरी तग न हथी, तग न जेवा तग न अखी। बे तग आया पे बते बड़ते।

पंच लोक पहथी जाय सत्या किसे लगा दोख अण देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लोग पंजवा पाया किरत ता हो पाक पवित पापी सतन कटिया थुका पईया तेत जित मुख नाम न उचरे।

आपे भांडे साजन आपे पूरुंदे, इक नी दुद्ध समाई अग चुल्ले बैं चढ़े, इक ने हाली तैसवारी गुरपुरान खड़े, तिना सुवारे ना

नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणाश अगंजुल अनाम समस्तल निवासे नृकामंग विभूते समस्तल स्वरूप को कर्मंग प्रणाशी स्वधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणाशी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल रिही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते।

दुष्ट जते उठवत तपता सकल मलेच्छ करौरण कहता जे अस तुज तब सरनी परे तिन कह दुष्ट दुख तवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन कह तुम संकट।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सूतक लोभ है जीवा सूतक कूड़ अखी सूतक विखना परत्रया परतन रूप कन्नी सूत कन पहला तुबारी खाहे नानक साधमी बदे जमपुर जाए महला पहला सबो सूत भरम है दूजे लगे जाए जमन मरन उठमे भाणे आवे जाए।

बेडर तोरा नीला चोला छे फुट जो साला शिके हाथ च तीर ते वांग गात्रे रखिया।

0: भुज बलबीर बरम सुख सागर गरत परत गहल हो अंगुरिया सर्वन सुरते नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत इंगुरिया। तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया एक बचन तरस मई अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने ने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़ क्यों मैं चल नहीं सकदा क्यों नहीं चल सकदे हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखा और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा दो कदम चलेगा तीसरे ते डिगेगा लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है बच्चे नु चलना आ गया प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है चलो एक कदम ही सही चलिया ते है एक कदम चल चलना एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही वाट लखां को दी है चिंता न कर कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटाया है तो गल स्पष्ट हो गई चलन दी जांच आ गई ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना मां नू चिंता हो जाती है पिता नू पीड़ा हो जाती है ले जांदे डॉक्टर कोलों हो गया तीन साल दा हो गया चार साल दा पैर नहीं पुटदा तीन चार वरिया दा हो गया अजेज दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहिंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलदा है मम्मा अखर पहले निकलदा है मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया है बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है वाहेगुरु कहना नहीं आया जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया एदी जबान चो पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कटवादी है चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे परशियन होवे अरबियन होवे चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है मां मां मां। और जे जिंदगी दा अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जीवन यात्रा सफल हो गई जगत ते आया सफल हो गया मां ते निकलिया और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सकया। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैनू बोलन दी इजाजत नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका मेरे कोल कन भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका मेरी जबान नू अजे बोलन दी जाच नहीं आई, तेरे रस्ते ते मैं चल सका ओ पैर में कित्थों लियावा, हैगे ने मनुख कोल पैर, एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चल देने, बाजार दे मार्ग ते चल देने, संसार दे मार्ग ते चल देने, कदी कदाई कोई कदम जो परमार्थ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहंदे मेरे कोल ओ हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन, हथ हैन मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा, हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੈਸਾ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मे बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी च पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है, सफल हो गए हथ तेरा पल्ला मेरे हथे च आ गया, महान हो गए ने हथ तेरा दामन मेरे हथा च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया उन जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिसनू उजागर करने की मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां जिहड़े तैनू वेख सकदे ने, इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां विच परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां किसे दी अखां विच धन है टपक रिहा लोभ, किसे दी अखां विच रूप है टपक रही है वासना, किसे दी अखां विच उसकी औलाद है टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां विच तियां पुत्र ने, वाशना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है, क्रोध ही दस रहे है ए लाल अखां ही दस रही ने अखां दे च कोई दुश्मन बैठ गया है, और दुश्मन ने अखां लाल कर दितियां। अखां लाल नहीं होईयां दुश्मन ने लाल कर दितियां, दुश्मन ने अपना रंग अधपक दित्ता। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां दे च परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आंदे, वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चों प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिस दे चों समदृष्टि झलकदी है, जिस दे चों दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्ट, अमृत दृष्ट। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੀ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਕਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੱਕਣੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਓ ਅੰਗੁਰੀਆ ਸਰਵੰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟੁੱਤ ਪਿੰਗੋਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਪੁਰਸ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ, ਪਵਨ ਦੀ ਛਾਂ ਛਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਭ ਤੇਰਾ ਨਾਦ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸਨੀਕ, ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਦੇ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਾਸੀਅਤ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, फकीर साईं ऐसा क्यों कर दे हो जब सानू सुनान वास्ते ही तलावत कर दे हो जब सानू सुनान वास्ते ये उपदेश आवाज दें दे हो फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लें दे हो पिट साड़ी तरफ कर लें दे हो तो हसन मुस्कराया कहिंदा मित्रों मैं थोड़े विच ते दीवार विच कोई फर्क नहीं समझदा थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता इको ही गल है कोई फर्क नहीं है मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलती मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलते मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी मैं बोलदा तुसी भी कित्थे सुनदे हो ओही कुछ सुनिया जांदा है जो मनिया जांदा जिसनू मनिया ही नहीं तो की सुनिया इस तरह का सुनना तो फिर दीवारां भी सुनदियां धार्मिक दुनिया दे मनुख पत्थर दा पत्थर रह जांदा है जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह है कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पेस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा चल भी नहीं सकदा कुछ पकड़ भी नहीं सकदा बोल भी नहीं सकदा कोई भी बोध नहीं इसनों इते गोद इच इंज पे है जिमें एक पत्थर लेकिन पत्थर दे ए उम्मीद नहीं कीती जा सकती कि कदी ये चलेगा कदी ये दामन पकड़ेगा कदी बोलेगा बच्चे ने विश्वासे गोद च रखे और ममता नाल रखे है आसा जुड़ी हुई है उम्मीद जुड़ी है अज नहीं ते कल चलेगा चलो अज नहीं ते कल बोलेगा अज नहीं ते कल सुनेगा अज नहीं ते कल इसनू असलियत दिखाई देगी सत्संग दे जो सत्संगी बैठे होंदे ने गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है चलो कोई गल नहीं अज चलना नहीं आया कल चल लेंगे अज वेखना नहीं आया कल वेख लेंगे अज सुनना नहीं आया कल सुन लेंगे अवतारी पुरुष इन्हां सत्संगियां नू इस ढंग नाल बर्दाश्त करदे ने और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उन्हां नाल जोड़दे ने इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वकत दे गुरबाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोलदे ने देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए हे प्रभु तैनू देख सका मेरे को लखा नहीं ने कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए मैं सुन सका मेरे को सरवन नहीं है और तेरे कन्ना तक मैं बोल पुचा सका मेरे को जबान भी नहीं है तीसरी पंक्ति बड़ी बाकमाल गल कर देने भाई साहब मन में गुरमत गुरमत में ना मन नेचल होए कैसे उन मन लेवलाई है हे गुरु जो तेरी सोचनी है जो तेरी मत है वो मैनू कबूल नहीं है जो मेरी सोचनी है जो मेरी मत है वो तेनू कबूल नहीं तो संबंध किस तरह जुड़े है रिश्ता किवें जुड़े है एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल का बुढ़ा सहमत हो गया है इसनू बुढ़ा आखण की लोड़ नहीं है भी बच्चा है पर एक 4 साल का बच्चा 81 साल के बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है इसनू 4 साल का बच्चा आखण की लोड़ नहीं है ये बुजुर्ग है उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकता है जो उच्चा है छोटे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकता है जो छोटा है धन गुरु अंगद देव जी ने इसनू बड़ा सोहना खोलिया नाल इयाने दोस्ती वड्डा रू सोनियो पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थो अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई एक 80 साल दे बिरध दा 5 साल दे इस मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकता है दादे पोते दा संबंध हो सकता है मित्रता नहीं है दोस्ती नहीं है दोस्ती ते समतल ते हुंदी है बराबरी दे तल ते हुंदी है विचारां दी सांझ तो क्या 80 साल का बुढ़ा यह 4-5 साल के बच्चे के विचार सहमत होगा? अगर हो गया तो इसनों बुजुर्ग कहने की लोड़ भी नहीं, ये बच्चा है। क्या यह बच्चा 70-80 साल के इस बुजुर्ग के विचार सोचनी तर्जे जिंदगी सहमत होगा? कथा ही नहीं। अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं, ये बुजुर्ग है। दोस्ती समतल ते होंदी है, बराबरी दे तल ते होंदी है। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, इस नूं सियाणा आखण दी लोड़ की मूड है? और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इस नूं मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहते हैं, मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे, उन मन ले उलाइए, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने, तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है, तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है, मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े है, मैं नेड़े किस तरह आवा। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे, उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कुल हाथ ने, ना मेरे कुल पैर ने, ना मेरे कुल अखा ने, ना मेरे कुल कन है, ना मेरे कुल रसना है, ना मेरे कुल सोचनी है। हे गुरु, मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, चलना आ गया हे प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी चलना आया जिसने आज ही चलना सीखे, तो किन्ना चलेगा? एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु, तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहिंदे ने इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बांह पकड़ लेंदा है परमात्मा, बांह पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह उन महान झलक नू भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देन लग पैने, एक झलक है। पहला प्रकाश की है, अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाणे मनुख कदी उन्होंने अपने औगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां नु कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नु ओमंदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आखिया सी कतल कीता है, गुनाह कीता है, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज भी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता, किरत दिखाई देती है, पाप नहीं दिखाई देता, जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह तंदा दिखाई दे रहे ने, तो ये मनुख हुण गुनाह नु किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, एक पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी। कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति दी उपासक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पैंदी है, जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पैंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती, उनु प्रभु दी शक्ति किथे। जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते, उसनु परमात्मा दा पुन प्रताप किथे। जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा, वो चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा, कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जांदा है, जिसने अखां दा ऑपरेशन कीता है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उनु कहंदा है आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलदा तो डॉक्टर पुछदा है कुछ दिखाई देता, कहंदा हां अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे चाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहंदा अंधेरा। डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदे है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे दा भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी, उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे। कहंदे ने धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, कह लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगते हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मंग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगलगीर करन नू जी करे, उन्हों भी जी करता है, उस तो निछावर होने नू भी जी करता है, उस तो सदके होने नू भी जी करता है। सतगुरु कहंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु की संगत करदियां करदियां अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मैनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखा है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण की तमन्ना रह ही नहीं जाती। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जाता है, परमात्मा सुनाई देता है, परमात्मा सोच मंडल दे आ जाता है, वह मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है। सतगुर ए बुजुर्गी सारिया की झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares. Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
3: नानक ना

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.